0: ada banyak lagi lagu untuk anda. Guru.
1: Dengarkan kami di Gunung Jerayan 97.5. Bukit Palong Bali 90.5. Bukit Dedap Sik 105.1. Bandar Baru Selamar 88.5. Gunung Raya Langkawi 105.7. Radio Malaysia
2: मुझे भी कुछ कहना है
3: मुझे भी कुछ कहना है
2: पहले तुम
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
1: ना ना ना ना ना
2: किसे हो किरा FM।